ओम डैडी शरी से कौटा बेरिया में कहेंगे इवोन का कमन फिर अम्मा नुमको टू वहा कम्बे अच्छा बिरीदा कुछ अटके ट्रेवर में अगर मैं कहना को मूंगा